कुसुम्भ दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम छाए ज्यों चक कुम्यार पवाया दुख खावह दुख संचह भोगह दुख खावह दुख संचह भोगह दुख की बिरद वधाई नानक बिखम सुहेला तरियै जा आवै गुर सरनाई मेरा ठाकुरो ठाकुर नीका अगम अथाह राम हर पूजी चाही मेरे सतगुर।

0: हर सज्जन लद्दा, हर सज्जन लद्दा मेरे प्यारे, नानक गुरु लिवै चढ़ चेत बसंत मेरे प्यारे, भली रुते फिर बाजड़िहो मेरे प्यारे, आंगन धूड़ लुते मन आस उड़ीणी मेरे प्यारे, दुए नैन जुते गुरु नानक देख विगसी मेरे प्यारे, जो मात सुते हर की हर किया कथा कहानियां मेरे प्यारे, सतगुरु सुनाइया हर किया कथा कहानियां मेरे प्यारे, सतगुरु सुनाइया गुर विटड़िहो हौ भोली मेरे प्यारे, जिन हर मेल आइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे, मन चिंदेड़ा फल पाया हर तुथ हर तुथड़ा हर तुथड़ा मेरे प्यारे,
1: तुथड़ा। हाँ जी, थोड़ा जा उच्चारण औखा है दा। क्यों औखा है? क्योंकि तत्ता ते ठठा ना इकट्ठे बोलने मुश्किल हो रहे ने। तुथड़ा है, सिंपल है, ये कोई बहुता मुश्किल भी नहीं। तुथड़ा
2: जी,

0: अविनाशी अवगत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण साध सदा प्राणपत गत मत जाते प्राणपत गत मत जाते प्रे प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणै गुर बचन जाणै थिर संतन सोहाग मरै ना जावे जा कौ राम पतार ताकै अनद घणा सुखवंती सा नार सुखवंती सा नार शोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निध तित गृह नहीं ऊना सब कशु मधुर बानी प्रह मानी थिर मधुर बानी प्रह मानी थिर सुहाग ता का बना नानक वखाणै गुर बचन जाणै जा को राम पतार ताके अनद घणा
1: इथे उपर पाठ मान महित कल्याण हर जस इदा हो गया सी पर महित दी थां ते महती पाठ है जी इदा ध्यान रखियो कई वारी बोलण विच हो जांदा थोड़ा बहुत मान महत कल्याण हर जस महती पाठ करना है हां जी
0: आओ सखी संत पास सेवा लागिया पीसौ चरण पखार आप त्यागिया ताज आप मिटै संताप आप नह जान आईय सरण गहीजै मान लीजै करे सो सुख पाईय कर दास दासी ताज उदासी कर जोड़ दिन रहन जागिय नानक वखाणै गुर बचन जाणै आओ सखी संत पास सेवा लागिय जाकै मस्तक भाग सेवा लाया ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया साध संग हर कै रंग गोबिंद सिमरन लागिया परम मोह विकार दूजा सगल तनह त्यागिया मन सांत सहज सुभाओ बूठा आनंद मंगल गुण गाया नानक वखाणै गुर बचन जाणै जाकै मस्तक भाग सेवा लाया आसा महला पंजवा सलोक हर हर नाम जपंतिया कछ ना कहै जमकाल नानक मन तन सुखी होए अंते मिलै गोपाल शंत मिलाओ संतन कै संग मोहे

0: हाँ जी, हुण अंग 463 सलोक महला पहला। बिस्माद नाद, बिस्माद वेद, बिस्माद जीव, बिस्माद भेद, इत्थों हुण पाठ आरंभ हो रहा है जी। हाँ जी, पैसा जी
1: सलोक महला पहला। विस्माद नाद, विस्माद वेद, विस्माद जी, विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नागे, फिर है जंत, विस्माद पौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि, खेड है विडाणी, विस्माद अग्नि, खेड है विडाणी, विस्माद धरती, विस्माद खाणी, विस्माद साध लग है प्राणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद भुख, विस्माद भोग, विस्माद सिफत, विस्माद सालाह, विस्माद उजड़, विस्माद राह, विस्माद नेड़ै, विस्माद दूर, विस्माद देखै हाजरा हजूर, वेख विडान रहया विस्माद, नानक बुझन पूरै भाग। महला पहला। कुदरत दिसै, कुदरत सुनियै, कुदरत पाओ सुख सार, कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्ब आकार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्ब विचार, कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्ब विचार, कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्ब प्यार, कुदरत जाति जनसी रंगी, कुदरत जी जहान, कुदरत नेकिया, कुदरत बदिया, कुदरत मान अभिमान, कुदरत पौन पानी बै संतर, कुदरत धरती खाक, सब तेरी कुदरत, तू कादर करता पाकी नाई पाक,
2: कादर दद्दे दी से हरी बोल के,
1: सब तेरी कुदरत, तू कादर करता
2: पाकी, नहीं अलग नहीं होण देना, कादर इकट्ठा ही रखना, कादर नहीं कहना, पर सिहारी बोलनी जरूर है जी।
1: सब तेरी कुदरत, तू कादर करता पाकी नाई पाक, नानक हुक्म अंदर वेखै वरतै ताको ताक, पौड़ी आपी ने भोग भोग कै, होए पस मड़ पौर सिधाया, वड्डा हुआ दुनीदार, वड्डा हुआ दुनीदार, गल संगल घत चलाया, अकै करनी कीर्त बचिया, बह लेखा कर समझाया, थाओ ना होवी पौ दई, हुण सुनिया हुण थाओ ना होवी पौ दी, हुण सुनिया क्या रू आया, मन अंधा जन्म गवाया,

0: काल जुग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी सच मह आछ साच रहे सब को सच समावै रिग कह रहया भरपूर राम नाम देवा महसूर। महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी सच मह आछ साच रहे महला पहला। साम कह से तंबर स्वामी सच मह सच मह आछ साच रहे सब को सच समावै रिग कह रहया भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाय लिया पराछत जाहे नानक तो मोख अंतर पाहे जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया पार जात गोपी लै आया बिंदरा
1: पाठ पिया हो गया। इत्थे पाठ है भैया। ये काफी सारे पाठ मैं इकट्ठे ही दसन लगे ईड़ी नाल दया मया भैया। ये तीन पाठ खास आते ने होर भी आ सकता है। उस तो बाद हाहे नाल पाठ ने कहिया रहिया सहिया। इस तरह ये अखर बोलने ने शब्द बोलने ने पिया मेया जां सहिया कहा इदा नहीं होन देना। कहिया नू कहा नहीं कहना किते भी। जी
0: जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया
1: कान हलंत नाल बोल दियो।
0: जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम पया।
1: जदों ना बॉस सिर ते बैठा हुंदा फिर थोड़ा जा फ्री माइंड रह रहा बंदा। हुण बाई जी चले गए साड़ी सिरदर्दी वध गई उन्हां दी इस करके मैनूं बार बार कहना पैंदा है। नहीं तो अपनी मस्ती च भी चलो कोई गल नहीं बाई जी ने कह ही देना दस ही देना जो है इस करके खेमा करियो मैनूं ज्यादा इंटरफियर करना पै रहा। जी
0: पार जात गोपी लै आया बिंदरा बन मह रंग किया।
2: इत्थे जिहड़ा पाठ है बिंदरा बन अजकल वृंदावन कहिंदे ने वैसे ते पर इह सुणिया वी है वी अजकल अपने वी कीर्तन करदे आ पाठ करदे आ वृंदावन कहण लग पए क्योंकि उह शब्द मूंह चढ़ जांदे आ पर इत्थे हजूर ने बिंदराबन लिखिया पाठ वृंदावन नहीं कहना।
1: ये शहरां ने समस्या पैदा करती साडी उधर कादियां ने करती उधर सरसे ने करती ते इत्थे वी उह जिहड़ा शहर है ना अपने नाम वृंदावन ही है वैसे अजा अजकल चलता है पर मैनू लगता पुरातन समय विच वृंदावन होएगा ही ये नाम आए ने नाम बदल जाते ने समा पा के थोड़ा बहुत फर्क पैंदा है। सो शहरां ने समस्या ज्यादा पैदा करी हुई है साडे पाठां दे विच इसलिए ध्यान रखना है। जी
0: काल मह वेद अथर्बण हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील बस्तर ले कपड़े पहरे तुरख तुरक पठानी अमल किया चारे वेद होए सचियार पढ़ है गुण है तिन चार विचार भाओ भगत कर नीच सदाए तौ नानक मोख अंतर पाए पौड़ी सतगुर विट हो वारिया जित मिलिया खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जारिया सत गुरु है कोहिता विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया।
3: श्लोक महला पहला। सिमल रुख सरायरा आत दीर्घ आत मुच ओए जे आव है आस कर जाहे निरासे कित फल फिके फुल बक बके कामना आव है पत मिठत नीमी नानका गुण चिंग आईया तत सब को निवै आप काओ पार को निवै न कोय तर तार राजू तोलिया निवै सो गौरा होय अपराधी दूणा निवै जो हंता मिर्गाहे शीस निवाया क्या थीय जा हृदय कुसुदे जाहे। महला पहला। पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बिभूखण सारं त्रैपाल तिहाल बिचारं गल माला तिलक लिलाटं दुए धोती बस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं करमं सब फोकट निश्चौ करमं कहो नानक नेह चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुकम किए।

0: दया कपाह संतोख सूत जत गंढी सत वट एह जनेऊ जी का हई ता पांडे घत ना एहो टुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए धन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया।
1: हाँ जी शुद्ध पाठ कीता सिखा कन चढ़ाइया ते जिथे चिन्ह की गल आउंदी है सिखा सूत धोती किन्नी ए पंक्ति आउंदी है गुरबाणी दे विच जदों ब्राह्मण दे जिहड़े चिन्ह ने ते उत्थे पाठ पोला होना सिखा सिखा सूत सिखा तो भाव है सिर दे जिहड़े सिखर ते उह बोधी रखदे ने सूत तो भाव है जनेऊ धोती आदिक भी पहनते ने सिखा सूत धोती किन्नी इथे इहदा अर्थ है सिखिया सिखा कन चढ़ाई आ भी अपने जजमान दे कन विच सिखिया दिना पंडित जी तो भी ये ही सिखा दिना ना भी गुरु गुर ब्राह्मण थी आ भी अज तो बाद तेरा गुरु ब्राह्मण है सो इस करके ध्यान रखना है कई जगह ते पाठ सिखा आना कई जगह ते सिखा आना है इत्थे पाठ सिखा ही है जिस तरह कीता गया है। हाँ जी करो जी अगे
0: ओह मुआ ओह झड़ पया वे तगा गया ओह मुआ ओह झड़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिनस जी नाल तग कपाहो कतिया तग कपाहो कतिया बामन बटे आए कोह बकरा रिन खाया सब को आखै पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाइय होर नानक तग ना तुटई जे तग होवे जोर महला पहला नाए मन्ने ऐ पात उपजै सा लाही सच सूत दरग है अंदर पाइय तग ना तूट सपूत महला पहला तग ना इंद्री तग ना नारी भलके थुक पवै नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जिहवा तग ना अखी वे तगा आपे वतै वट धागे अवरा कत्तै लै भाड़ करे भी आहो कढ़ कागल दसे राहो सुन वेखो लोका एहो विडान मन अंधा नाओ सो जान पौड़ी साहेब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिस नो हुकम मनाए सी हुकम मन्ने ऐ हुवै प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै भावै सो करे मनहो चिंद्या सो फल पाए सी ता दर्ग है पैदा जाए सी सरोक महला पहला गऊ बैराह्मण काओ कर लावहो गऊ ब्राह्मण काओ कर लावहो गोबर तरन ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेछा खाई अंतर पूजा पढ़ह कतेबा संजम तुरका भाई।

मन पाया हौ पूत तेरा तू बाप मेरा एक ठाहर दोहा बसेरा कहो कबीर जन एको बुझिया गुर प्रसाद मैं सब कुछ सूझिया।

0: खटिया ले गए भाई, लट छटकाए तिरिया रोवै हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुन हो रे संत हो, पैसा कर कह ताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके
1: एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा, श्री कबीर जियो के चौपदे। एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्म में जन्म गवाया। हर का बिलोबना बिलोवहो मेरे भाई, सहज बिलोवहो जैसे तत् ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई। हर का बिलोबना मन का बीचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। कहो कबीर नदर करे जे मीरा, कहो कबीर नदर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा आसा।
0: एक बेनती करनी सी आप जी दे चरणा विच, जदों इत्थे पाठ कीता सी ना पिछे, शायद आप जी ने ख्याल कर लिया होवे उदों, सब जोगतन राम नाम है। इत्थे अदक ला के पहारा करके जोगतन पाठ नहीं करना, जोगतन जिवें होया सी महाराज जी दी कृपा दे नाल ओवें पाठ करना है। सब जोगतन उत्ते अदक ला के पहारा करके, हां जी वापस कर लो आसा बाती सु।
1: आसा बाती सुकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन ना निकस्यो धुआं, राव रहया एक अवर नहीं दुआ रहाओ। टूटी तंत ना बजै रबाब, भूर बिगार्यो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तौ बिसर्यो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिन ते नाहे परम पद दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते। राम अय्या हौ बारिक तेरा, काहे न खंडस अवगन मेरा रहाओ। जे अत क्रोप करे कर ताया, तापी चीत न राखस माया। चिंत भवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उतरस पारा। देह बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा

0: तीन देव प्रदाखतूर है करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तौ गढ़नहारे खाओ जे एह मूर्त साची है तौ गढ़नहारे खाओ भात पहत अर लापसी करकरा का सार भोगनहारे भोगया इस मूर्त के मुख छार मालन भूली जग भुलाना हम भुलाने नाहे कहो कबीर हम राम राखे कृपा कर हर राय आसा बारह बरस बालपन बीते बीस बरस कश तप ना कियो तीस बरस कश देव ना पूजा फिर पछताना बिरद भयो
1: पूजा पुला ही पाठ पूजा नहीं पूजा
0: तीस बरस कश देव ना पूजा फिर पछताना बिरद भयो तीस बरस कश देव ना पूजा

जन्म मरण दुख जाए ताना वाहेगुरु जी बिलावल महला पंजवा उदम करत आनंद पया

नाई कछु पोचा तान सो थान बसंत तान जय जपिया नाम कथा कीर्तन हर अतकना सुख सहज विश्रामा।

बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार। श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरी है घर नौ निध आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई हुए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी। गरीब नवाज पातशाह जी ने अपार बख्शिश की दीवान दी संपूर्ण तो उपरंत पावन श्री मुख वाक बख्श आप जी दे सरूप दी टहल सेवा हुई। सोहला साहब जी की बाणी का पाठ होया है। पातशाह कोटान कोट शुकर है। होइया बेअंत प्रकार दियां भुलां लई खिमा जाचना है। अगे तो सुमत बख्शिश करनी रहमत करो आप जी के हजूर संगत सेवादार हाजर ने। आप जी अपने सुंदर आसना उपर विराजमान होके सेवका नू खुशियां बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चितावे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

नाम तेया जिन नानक सत गुर पूजया तिन हार पूजक पूज करावा जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे।

Dega, dega. Dega, dega. पंथ की राज करेगा झूलते निशान रहे लागते दीवान रहे

मंगल गुणा के दाते स्वामी, बिना सुनो एक दीना, देहो दर्श नानक बलिहारी। जियाड़ा बाल बाल कीना, आस प्यासी पिर कैताई, ज्यो चात्रिक बूंदेरे, कहो नानक जियाड़ा बलिहारी। देहो दर्श प्रभ मेरे, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसाम दी, नूर अरसहो कुरसहो चटिया, तुद डिठे सचे पाते सा, मल जन्म जन्म दी कटिया, सजन सच्चा पाते साह, सिर साहां दै साहो, जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहो, जिस पास बैठिया सोही है।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक आदि पूरन मद पूरन अंत पूरन परमेश्वर है।

तेहा कोए ना सुजई जेते सुगुण कोए करे। सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया धरत धवल आकाश, सुनिया दीप लोह पाताल, सुनिया पोहे ना सकै काल, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद, सुनिया मुख सालाहन मंद, सुनिया जोग जुगत तन भेद, सुनिया सासत सिमृत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया अठ सठ का इसनान, सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान, सुनिया लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, सुनिया सारा गुणा के गाह, सुनिया सेख पीर पात साह, सुनिया अंधे पावह राह, सुनिया हाथ होवै असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास, मन्ने की गात कही ना जाए, जे को कहै पिछै पछुताए, कागद कलम ना लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोहे चोटा ना खाए, मन्नै जाम कै साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पथ से प्रगट जाए, मन्नै मग ना चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती सन बंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै पावह मोख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारे गुर सिख, मन्नै नानक पवहै ना भिख, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान।

नाहि सुमार। तौल धर्म दया का पूत संतोख था परख्या जिन सूत जे को बुझाय हो वै सचियार। तबलै उपर किता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कवन जोर। जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए। केता तान सुआले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तेस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख जप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह है उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार। वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूरख अंध कोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ माल पख खाहे असंख निंदक सिर कर है पार नानक नीच कह विचार। वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह है सिर पार होए। अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे। जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ बिन नावै नाही को थाओ। कुदरत कमन कहा विचार। वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार। भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सोखेह मूत पलीती कपड़ होए। दे साबून लईऐ ओह धोए भरिऐ मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे। कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवहु जाहो। तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नहाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोए विन गुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार। कवन से रुति माहो कवन जित होवै आकार। कवन से रुति माहो कवन जित होआ आकार। वेल ना पाया पंडती जे होवै लेख पुराण वक्त ना पायो कादिया जे लिखन लेख कुरान।

है समुंद साह सुल्तान गिरहा से तिमाल तन कीड़ी तोलना होवनी जे ते स मनहो न विसर है अंत ना सिफती कहन ना अंत

अंत न जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊंचा थाओ ऊंचे उपर ऊंचा नाओ एवड ऊंचा होवै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगहै जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खाप तुटहै वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साध मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाए क आखन पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आखह से पे के जेसनो बक्से सिफत सालाह नानक पात साही पात साह अमुल गुण अमुल वापार ये अमुल पंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लेव लाए आखह वेद पाठ पुराण आखह पढ़े करह वख्यान आखह ब्रह्मे आखह इंद आखह गोपी तै गोविंद आखह ईसर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करेहे ता आख ना सकह केई के जेवड़ पावे तेवड़ होए नानक।

सुख शर्म पत चोली ध्यान की करह विभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसा आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दोयकार चलावह लिख आवह भाग आदेश तिसह आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जेव तिस पावै तिवै चलावै जेव होवै फुरमान ओह वेखै उन्हां नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर विखै सिरजन हार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेश एक दू जीबा लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश ए तो राहे पत पवड़िया चढ़िया होए इक्कीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाईया कूड़ी कूड़ा ठीस आखन जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगन देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राज माल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुट्टै संसार

तिस विच जी जुगत के रंग तिन के नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म केते पवन पानी वै संतर केते कान महेश केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश केतिया कर्म भूमि।

किते देवी वेश किते देव दानव मुन किते रतन समुंद केतिया खानी केतिया बाणी केते पात नरेंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड तथा नाद विनोद कोड आनंद सर्म खंड की बाणी रूप तथा घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकिया गला कथिया ना जाहे जे को कहे पिछे पछुताए तथा घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तथा घड़िया सुरा सदा की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तथा होर ना कोई होर तथा जोध महाबल सूर तिन मह राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहे ना ठागे जाहे जिन कै राम वसै मन माहे तिथै भगत वसह के लोह करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथै ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जेव जेव हुक्म ते

देह अचल मूरत अनपौ प्रकाश अमितोज कह जाय कोट इंदर इंदरान साहे साहान गणिजय त्रिभवन महीप सोर नार असोर नेत नेत बान त्रिन कहत त्वय सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम बरनत सुमत पुजंग पर्यात छंद नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग कृपाले नमस्तंग अरूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अपेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाय नमस्तंग अजाय नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग अनामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अपीते नमस्तंग अबाहे नमस्तंग अटाहे नमस्तंग अनीले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगादे नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अपंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अपारे नमस्तंग सो एकाय नमस्तंग अनेकाय नमस्तंग अपूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्परमे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्पेशे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्ताते नमस्तंग निर्काते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अपूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाहे नमस्तंग अबाहे नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग परपोगे नमस्तंग सोजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अपंगे नमस्तंग अगम्ये नमस्तस्तरम्ये नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे अदेशं अदेशे नमस्तंग अपेशे नमस्तंग निर्तामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्व काले नमो सर्व दयाले नमो सर्व रूपे नमो सर्व भूपे नमो सर्व खापे नमो सर्व थापे नमो सर्व काले नमो सर्व पाले नमस्तस्त देवाय नमस्तंग अपेवाय नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व रंगे नमो सर्व पंगे नमो काल काले नमस्तस्त दयाले नमस्तंग अबरने नमस्तंग अमरने नमस्तंग जरारंग नमस्तंग किरतारंग नमो सर्वतंदे नमोस्त अबंदे नमस्तंग निरसाके नमस्तंग निर्बाके नमस्तंग रिहिमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तस्त रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्व सोखंग नमो सर्व पोखंग नमो सर्व कर्ता नमो सर्व हर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्व दयाले नमो सर्व पाले चाचरी छंद त्वय प्रसाद अरूप है अनूप है अजू है अपू है अलेख है अपेख है अनाम है अकाम है अते है अपे है अजीत है अपीत है त्रिमान है निदान है त्रिवर्ग है असर्ग है अनिल है अनाद है अजे है अजाद है अजन्म है अबरण है अपूत है अपरण है अगंज है अपंज है अचूज है अचंज है अमीक है रफीक है अतंध है अबंध है निर्बूज है असूज है अकाल है अजाल है अल्लाह है अजाह है अनंत है महंत है अलीक है निरसरीक है निर्लंब है असंभ है अगम है अजम है अपूत है अछूत है अलोक है अशोक है अकर्म है अपर्म है अजीत है अपीत है अबाह है अगाह है अमान है निदान है अनेक है फिर एक है पुजंग पर्यात छंद नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमो देव देवे अपेखी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने नमो सर्व गौने नमो सर्व पौने अनंगी अनाथे निरसंगी परमाथे
नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत्य नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति बेपूते कलंकं बिना ने कलंके स्वरूपे नमो राज राजेश वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश वरं परम वृद्धे नमो शस्त्र पाने नमो अस्त्र माने नमो परम ज्ञाता नमो लोक माता अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवेशो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग इसनानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंतर जंतरंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अछेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छांद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छांद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर ततर विराज ही अवधूत रूप रे साल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग नारेख आद पुरख उदार मूरत अजून आद असेख देश और ना पेश जाकर रूप रेख नाराग जतर ततर दिशा विसा होए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हू न जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेव ना जान ही जिह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जान कह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बिहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुर तीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप
आद देव अनाद मूरत थाप्यो सब्बै जिह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार सर्ब विसव रचयो स्वयं भव गणन भंजन हार कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो पर धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग रागना रंग जाकह जात पातना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जेह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भक्त नेत कोट सिमरित पुराण शास्त्र ना आव ही वह चित मद भार छंद त्वै प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनुभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज भानान भान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अभा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्वा पार नाडय अन दंड बाडय चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे पुजंग प्रयात छंद चतर चक्कर करता चतर चक्कर हरता चतर चक्कर दाने चतर चक्कर जाने चतर चक्कर वर्ती चतर चक्कर भरती चतर चक्कर पाले चतर चक्कर काले चतर चक्कर पासे चतर चक्कर वासे चतर चक्कर माने आए चतर चक्कर दाने आए चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना भरमंग ना पितरै ना करमंग ना काए अजन्मंग अजाय ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिस अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत बरणै के विभूत करणै के राजं प्रभा है के धर्मं तुजा है के आशोक वर्णय के सर्वा अपर्णय के जगतं कृति है के छत्रं छत्री है के ब्रह्मं स्वरूपय के अनुभव अनुपय के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रं विहीनय के एकय अधीनय के रोजी रजाकय रहीमय रिहाकय के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वतर मान्या के सर्वतर दान्या के सर्वतर गावना के सर्वतर पावना के सर्वतर देसा के सर्वतर पेसा के सर्वतर राजा के सर्वतर साजा के सर्वतर दीना के सर्वतर लीना के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसा के सर्वतर पेसा के सर्वतर काला के सर्वतर पाला के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजय के सर्वतर राजय के सर्वतर सोखय के सर्वतर पोखय के सर्वतर तराणय के सर्वतर प्राणय के सर्वतर देसय के सर्वतर पेसय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जापया के सर्वतर थाप्या के सर्वतर भानय के सर्वतर मानय के सर्वतर इंद्रय के सर्वतर चंद्रय
के सर्वं कलिमय के परमं फिहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू है तमामुल रुजू है हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकस्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रुजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तोपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओं आद रूपे अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिभुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है किनरकं परनास है पृथ्वीउल प्रवास है निरुकत प्रभा है सदैवं सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुकत सदा है विभुगत प्रभा है अनुकत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनांग है अपेख है अलेख है अपरम है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अदूत है अनास है उदास है अतंद है अबंद है अपगत है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलेख है अदेख है अलेख है अपेख है अटाह है अगाह है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है अजय है अजाद है अजन्म है अवर्ण है अपूत है अपर्ण है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न पोत्रय न पुत्रय न सत्रय न मित्रय न ताताय न माताय न जाता न पाता निरसाकं सरीक है अमितो अमीक है सदैवं प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमुल कमाल है के हुसनुल जमाल है गनीमुल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल सिकान है हिरासुल फिकान है कलंकं परनास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकं परनास है बेहस्तुल निवास है के सर्बुल गवान है हमेशुल रवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परं परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलं प्रकाश है के अमितो सुबास है के अजब स्वरूप है के अमितो विभूत है के अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलं अनंग है के अमितो अपंग है मद पार
मध भार छंद त्वै प्रसाद मुन मन परनाम गुण गण मुदाम अर

गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गणै नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बिन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बिसेखाय वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेखाय पौन आहार जति जत धार सबै सो विचार हजारक देखाय श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेखाय शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सो साज सनाह दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तूर अरीन मरूर मवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अभिचार है सार की धार पछैया तोरत देस मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब सिरे सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक देवैया दानव देव फनेंद नि साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जाल मैं थाल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जायत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्तर सबै अवलोक चपेंगे मानव इंदर गजिंदर नरादप जौन तिरलोक को राज करेंगे कोट इसनान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस हैं पग ते नर फेर न देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बक ध्यान लगायो नाथ फिरयो लिये साथ समुन्दरन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिखयान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहौ सुन लेहो सबै जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज धरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लखियो हर अवाची दिशा मह काहू पछाह को सीस निवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो पूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो पूर किरिया उर्ज्यो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पात साही दसवी कबियो बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहै हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो आप हाथ दै मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन कौ आज संघरियै पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रहै प्यासा तुम है छाड़ कोई अवर ना त्याऊं जो बार चाहऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ दै मुझै उबरिया मरण काल का त्रास निवरिया हूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझ जू करिया हो रक्षा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दास कंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी सेव कियो बेदराज ब्रह्मा जू थियो ज
जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो आदि अंत एकै अवतारा। सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी। सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पालमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना है घट घट के पट पट की जाना है। जब उदकरख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह धार सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम। जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निरिबकार निरलंब आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा जा को भेवना पावत बेदा ताका ओ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत। महादेव काओ कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती। बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखा न जाय पसारा केह बिद सजा। प्रथम संसारा एकै रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेतज किनी उत भुज खान बहुर रच दिनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा कहूं सिमट भयो संकर एकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचम भव आदि जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जित उठवत उत्पाता। सकल मलेच्छ करो रान काता जे अस तुज तब सरणी परे। तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे। तिनके तुम संकट सब टारे जो काल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है। रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कारमो सब होई दुष्ट छाह छुवै सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग केत मैं सरन तिहारी आप हाथ दै लेहो उबारी। सर बठाओर मोह हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूरन सुभ राता। किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दोखी अन को छाय करता। श्री अस तुज जब भय दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला। मन बांछत फल पावै सोई दुख ना तिसै व्यापत कोई। अडिल सुनै गुंग जो याहे सो रस ना पावई। सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भाओ निकट ना तिन नर के रहै। हो जो याकि एक बार चाओ पई को कहै चाओ पई। संबत सत्र है सहस पनिजै अर्ध सहस फुन तीन कही जै। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा। सुवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेओ। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कहे हम एक ना जानियो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखानियो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै
गहयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तुहार, सगल द्वार कौ छाड़ कै। गहयो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज आस, गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर ता पाया। सहज सेती मन वजिया वाधाइया, राग रतन परवार परिया। शब्द गावन आईया, शब्दो ता गावहो हरि के रामन जिनी बसाया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया। तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। अंगीकार उह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गला समरथ सुवामी, सो क्यों मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही। घर तेरा है, घर ता तेरा है, सब किछ है। जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वस्या। वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नाही। घर तेरा है, साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाईया। कर सांत सुख मन आए वस्या, जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो, जिस दिया एह वडियाईया। कह नानक सुनहो संत हो, शब्द धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सभागै। घर सभागै शब्द वाजे, कला जित घर धारिया। पंच दूत तुद वास कीते, काल कंटक मारिया। धुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होवा, तित घर अनहद वाजे। साची लिवै बिन देह निमानी, देह निमानी लिवै बज हो। क्या करे वेचारिया, तुद बाज समरथ कोय नाही। कृपा कर बनवारिया, एस नाओ होर थाओ नाही। शब्द लाग सवारिया, कह नानक लिवै बज हो। क्या करे वेचारिया, आनंद आनंद सब को कह। आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते। कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया। अंदर हो जिन का मोह टुटा, तिन का शब्द सचै सवारिया। कह नानक एहो आनंद है, आनंद गुर ते जानिया। बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै, पावै ता सो जान देहे। जिस नो होर क्या कर है वेचारिया, एक भरम भूले फिर है दह दिस। एक नाम लाग सवारिया, गुर प्रसादी मन भया निर्मल। जिन्ना भाना पावे, कह नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे। आवहो संत प्यारे हो, अकथ की कर है कहानी। कर है कहानी अकथ केरी, कित द्वारे पाईऐ। तन मन धन सब सौप गुर काओ, हुकम मन्या पाईऐ। हुकम मन्हो गुरु केरा, गाव हो सची बाणी। कह नानक सुनहो संत हो, कथे हो अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई, किनै ना पाया चतुराई। ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईआ। कुर्बान कीता तिसै विटहो, जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई, किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तूजे देखदा। चलै नाही तेरै नाले साथ, तेरै चलै नाही तिस नाल। क्यों चित लाईऐ,
ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछोताइयै। सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरा नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले। अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा। अपना आप तू जान हे जी, जंत सब खेल तेरा। क्या को आख वखान आए, आख है ता वेख है। सब तू है जन जगत उपाया। कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाय, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चुका सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनु आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता। केरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार ताज त्रिसना। बहुत नाही बोलना, खन्या हो तिखी वाल हुनिकी। एत मार्ग जाना गुर प्रसादी, जिनी आप तजया हर वासना समानी। कह नानक चाल भगता, जुग हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए हेते विचल है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जेव तू चलाए हे तिवै चल है, जिन्ना मार्ग पाव हे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरद्वारे सुख पाव हे। कह नानक सच्चे साहिब, ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला शब्द सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला। सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसया। जिन तुरहो लिखिया आया, एक फिर है कनेरे कर है गल्ला। गली किनै ना पाया, कह नानक शब्द सोहिला। सत गुरु सुनाया पवित होए से जना। जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटंब सहत स्यो। पवित संगत सबाइया, कह दे पवित सुन दे पवित से पवित। जिनी मन वसाया, कह नानक से पवित। जिनी गुरमुख हर हर त्याया, करमी सहज ना उपजै। विन सहजै सहसा ना जाए, नह जाए सहसा कितै। संजम रहे कर्म कमाए, सहसै जियो मलीन है। कित संजम धोता जाए, मन धोवहो शब्द लग हो। हर स्यो रहो चित लाए, कह नानक गुर प्रसादी। सहज उपजाए इह सहसा इव जाए। जिया हो मैले बहरहो निर्मल, बहरहो निर्मल जिया हो ता मैले। तिनी जन्म जुआ हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनहु विसारिया, वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही। फिर है ज्यो बेतालिया, कह नानक जिन सच तजया। कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया। जियहु निर्मल बहरहु निर्मल, बहरहु ता निर्मल जियहु निर्मल। सतगुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुचै नाही। मनसा सच समाणी, जन्म रतन जिनी खटिया। भले सेवन जारे, कह नानक जिन मन निर्मल। सदा रह है गुर नाले, जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै। होवै ता सनमुख सिख कोई, जिया हो रह गुर नाले। गुर के चरण हिरदै त्याए, अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रह परणै, गुर बिन अवर ना जानै कोई। कह नानक सुनहु संत हो, सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वेमुख होवै, बिन सतगुर मुक्त ना पावै। पावै मुक्त ना होर थै कोई, पुछो हो बिबेकी आ जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखा हो, बिन सतगुर मुक्त ना पाए। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाव हो सच्ची बाणी। बाणी ता गाव हो गुरु केरी, बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै, हिरदै तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग,
जपे हो सारग पाणी कहे नानक सदा गाव हो एह सची बाणी। सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी, हर हर नित कर है रसना। कहया कछु ना जानी चित जिन का हिर लया, माया बोलन पैर वाणी। कह नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी, गुर का शब्द रतन है। हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा, एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया। सच्चा लाया भाओ आपे हीरा रतन आपे, जिसनो दे बुझाए कह नानक शब्द रतन है। हीरा जित जड़ाओ सेव सकत आप उपाए, कै करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै। गुरमुख किसै बुझाए तोड़े बंधन होवै, मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै, एकस स्यो लिव लाए कह नानक आप करता। आपे हुक्म बुझाए सिमरित शास्त्र, पुन पाप बिचार दे तत्तै सार ना जानी। तत्तै सार ना जानी गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी, तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी। गुर किरपा ते से जन जागे, जिना हर मन वस्या बोल है अमृत बाणी। कह नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागै। जागत रैन विहानी माता के उदर मह प्रतपाल करे, सो क्यों मनहो विसारियै। मनहो क्यों विसारियै ए वडदाता, जे अगन मह आहार पहुचावै। ओस नो केहो पोहे ना सके, जिस नौ अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए। गुरमुख सदा संभालिया कह नानक ए वडदाता, सो क्यों मनहो विसारिया। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही। करता है खेल रचाया जा तिस भाणा, ता जमया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। एह माया जित हर विसरै, मोह उपजै भाव दूजा लाया। कह नानक गुर प्रसादी, जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया। हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया जाए किसै विटहो। रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै, तिसनु सिर सौपिया विच हो आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहै, हर वसै मन आए। हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका, जिन हर पलै पाए। हर रास मेरी मन वनजारा, हर रास मेरी मन वनजारा। सतगुर ते रास जानी हर हर नित, जपि हो जिया हो लाहा खटि हो दिहाड़ी। एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कह नानक, हर रास मेरी मन हुआ वनजारा। ए रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए। होरत किता जिचर हर रस पलै ना पाए, हर रस पाए पलै, हर रस पाए पलै पिया। हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागै आए, एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए। कह नानक होर अन रस सब विसरे जा, हर वसै मन आए। हे शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी, ता तू जग मह आया। हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया। हर आपे माता आपे पिता, जिन जियो उपाए जगत दिखाया। गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया। कह नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया, हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया। हर गाओ मंगल नित सखिए, सोग दुख ना व्यापए। गुर चरण लागे दिन सभागे, अपना पिर जापए। अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कह नानक प्रभ आप मिलिया, करन कारण जोगो।
ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਆਏ ਕੈ ਕਿਆ ਤੁਦ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਤੁਧ ਸਰੀਰਾ ਜਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮਹਿ ਆਇਆ ਜਿਨ ਹਾਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਾਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਪਾਇਆ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਆ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਏ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਦਰੀ ਹਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਇਹੋ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ ਏ ਸਰਵਨ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਾਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੋ ਪਠਾਏ ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਨਹੋ ਸਤ ਬਾਣੀ ਜਿਤ ਸੁਣੀ।

जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो बहो साचै सुननै नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए। दसवा गुप्त रखाया गुरद्वारे लाए भावनी। इकना दसवा द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नाव नाव निद तिसदा अंत ना जाई पाया। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया। एहो साचा सोहेला साचा घर गावहो गावहो ता सोहेला घर साचा। जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्याव है जा तुद भाव है। गुरमुख जिना बुझाव हे एहो सच सबना का खसम है। जिस बख्से सो जान पाव हे। कह नानक सच सोहेला सचै घर गाव हे। आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे।

सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे आपार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे।

वाजे अनहद तुरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आ गए

सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है। जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए घर नाओ निध आवै ताए। सब थाई होई सहाय दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सब थाई होई सहाय दसा पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चाली मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन दिठ कीता तिना प्यारिया सच्यारिया दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दित्ते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाईयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल किराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासा नाल निबाही तिना समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देख तेग पत है बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहिगुरु। बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु। आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो समूह गुरद्वारिया गुरधामा जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नियोटिया दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पांच बाणियां दे नितनेम संपूर्ण होए हन महाराज। अगाध बोध बाणी दे जाप करदियां तो आप जी दे सेवकां पासों होईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फला देच दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते परवान करनी सब नू अपने दरो करो नाम दी दात गुर सिखा वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के परिवारां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदुरुस्तियां बख्शिश करदियां होया अपने दर घर दे नाल इसे तरह जोड़ी रखना
आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंचामृत श्री कड़ाह प्रसाद जी दी देख सजा के हाजर है। आप जी दे दर प्रवान होवे, दर परवानिया होया प्रसाद संगत विच वरताउण दी आग्या बख्शो। पवित्र हुक्मनामे दी दात बख्शो, हुक्मनामे ते चलण दी समर्था बख्शो। सही प्यारे मेल जिन्हा मिलिया तेरा नाम चेतावे, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

सो कहो टल गोर सेविया अहने सहज सुबाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहां दै साहो जिस पास बैठिया सोहिया

जिस आप बुझाए सो बुझ सी, निर्मल जन सोई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अंतर्गत होके सत्संग जी नाम नूं सुनना करना जीओ नाम चक्कर ते सुन सकते हो हिरदा चक्कर जिथे दिल की धड़कन है उत्थे सुन सकते हो कंठ चक्कर जिथे गले चो आवाज आती है उत्थे सुन सकते हो।

पौड़ी साहब दयाल कृपा करित साहिकार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसन हुक्म बनाए से हुक्म मन्या होवे प्रवान त खसम का महल पाए से खसम भावे सो करे मन चंदे सुफल पाए सी।

असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत कहा बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी वर्ण सके मेहमान जो तिहारी हम न सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिहो तुम कथा सुधारी कहां लगे एहो कीट बखने महिमा तुमरी तो हे प्रभ जन मूक उचरे शास्त्र खट पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखे बदरो सुने

अम्य दृष्ट शुभ कर हर अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुख मन वसै दुख संसार है खोवै गुर नव निद दरियाओ जन्म हम कालख धोवै सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज दर्शन परसिया गुरु जन्म मरण दुख होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु तुद डिठे सचे पाते सा मल जन्म जन्म दी सजन सचा पाते सा सिर साहां दे

0: जिंदे
1: ना सानी सारी दुनिया दे सानी सारी दुनिया दे उस संत सिपाही दा
0: केड़ा कर्ज चुका सकदा बाजा बाले माही दा केड़ा कर्ज चुका सकदा बाजा

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगना संग अलापै अठ नंदना प्रथम राग भैरु वै करही पंच रागणी संग उचर हे प्रथम भैर भी बिलावली पुनिया की गावे बंगले पुन असले की पही बारी ए पैरु की पंचो नारी पंचम हरख दिसाख सुनावे बंगाल मद माधव गावे ललत बलावल गाव ही अपनी अपनी भांत अट पुत्र पैरब के गाव है गायन पात्र द्वितीया माल को सक अलप है संग रागणी पंचो थाप है गौंड करी।

मारु मस्त अंग में वारा प्राबल चांड कौ सक उभारा खट औरा नद गाये अटमाल कौ ससंगलाय पुन आयो हंडोल पंच

हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पतल क्रिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया

सब जगत पैरी पाए जियो। हर गुर है पाणा दी वड़ियाई, तुर लिखिया लेख रजाए जियो। कह सुंदर सुनो संत हो, सब जगत पैरी पाए जियो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु।

सर्प जैसे अर्जहारी नाव खंडन को राज कमावे अंत चले गोहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया धन उस जन्मा नानक तिस बलहारी गुण निदान गुण तिन ही गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया धन उस जन्मा।

वह जो सेवै तुध जी जन नानक तिन कुर्बाना। हर त्यावै हर त्यावै तुध जी से जन जुग में सुखवासी। से मुक्त पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिनका भौ सब गवासी। जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी।

तुदे आपे श्रेष्ठ सब उपाई दी, तुदे आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जान होई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे।

कोई अवर न त्याऊं, जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्य।

सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बध कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, कीटी ते कुंचर असथूला।

जाने जब उदकर्ख करा कर तारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब आकर्ख करत हो कब हूं तुम मैं मिलत देह तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै।

निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा।

उत पाता सकल मलेच्छ करो रण काता जे अस तुज तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुआ मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे ने हर हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छा छुए सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा।

गुरमत अनुसार पूरियां करनिया समूह परिवारां अंदर आपसी प्यार इतफाक सुख शांति तंदुरुस्तियां चढ़दी कला बख्शण।

हर कीरत कल जुग पद उत्तम हर पाइए सतगुर माजा हौ बलिहारी सतगुर अपुने जिन गुप्त नाम परगाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल बिख गए गवाजा सत